प्रियमीन दीवार है देखी नोनवाद्वा गायना करना पुन्वन सहदेवन इहल स्वर्गल वेडवासे करन उबगे शुद्ध देव दूत्यान दहस्वर दहसक्त दस दहसक्त्मर दस दहसक्त्वन देव दूत सेना वल स्वकीय महिमे पसकता उबुहां से दिरिये वेदवेटे मीन उबुहां से शुद्धाई उबुहां से शुद्धाई उबुहां से